0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 247-3141-230।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125252786।
4: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे

0: टे सौ सतेताली बटी एकेताली बसो टी
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
4: ख़ुशख़बरी ख़ुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
6: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
7: 90.4। पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
7: 03125252786।
1: जी हा 231-25-25-786
7: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842
3: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
0: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 03125252786
1: जी हा 2315525786
0: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
3: असा जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हाँ, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: कहते हैं तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के थे? जरदारी साहब के जो बरखुरदारान हैं, एक बरखुरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं, एक दूसरे बरखुरदार हैं वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है, ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। ओ भाई, इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है, ये चल नहीं सकता।
2: वजीर आजम जे सलाहकार राणा सनावला जो पीपल्स पार्टी ते वार शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के बुल्क टोड़े वजीर आजम थियण जो तानो ॾेई छॾियो। घरू वजीर मोहसिन नकवीअ ते बि तनक़ीद। मुज़फ़्फ़राबाद में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे राणा सनावला चयो त जेकॾहिं तव्हां नवाज़ शरीफ़ खे चवंदा त सदाई धांधली करे वज़ीर आज़म थियो आहे त पोइ हिते ही ॻाल्हि बि थींदी आहे त को मुल्क टोड़े पहिरियों भेरो वज़ीर आज़म थियो हो। वज़ीर आज़म जे वोटनि खे अवां फारम 47 जो सॾींदा त ॿुधायो सदर खे मिलियल वोट कहिड़े फारम जा आहिनि। ज़रदारी साहब जो ॿियो फर्ज़ंद चई रहियो आहे त सिस्टम ख़राब थी चुको आहे, अॻिते न वधी रहियो आहे। इक़्तदार जा मज़ा वठण बाद ओचितो खेनि सिस्टम ख़राब लॻण लॻो आहे, जेका अजीब ॻाल्हि आहे।

कश्मीरनि खे पाकिस्तानी शहरनि जहिड़ा हक़ ॾियारणु चाहियां थो। कश्मीर जे पाणी, बिजली, ज़मीन ऐं ॿेलनि ते पहिरियों हक़ कश्मीर जी अवाम जो आहे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त कश्मीर जे पाणीअ सां समूरो पाकिस्तान रोशन थिए थो। कश्मीर जा घर, अस्पतालूं ऐं स्कूलनि खे बि फ़ाइदो मिलणु घुर्जे। कश्मीर जे हर मनसूबे जो हिसाब कश्मीरनि जे साम्हूं थियणु घुर्जे ऐं खेनि वाजिब हिसो मिलणु घुर्जे। कश्मीरनि खे कश्मीर में मिल्कियत जो हक़ ॾियारणु चाहियां थो।

हैदराबाद जे हाला नाके वारे इलाइक़े भरिसां क़ाइम क़दीमी ॻोठ सुमार मीरबहर जे रहवासियुनि जो ॻोठ जो रस्तो बंदि करण ख़िलाफ़ एहतजाज। मुज़ाहिरीन क़ौमी शाहरा ते धरणो हणी रोड बंदि करे छॾियो। ॻोठाणनि मूजिब ॻोठ ख़िलाफ़ साज़िश आहे, रस्तो न खोलियो वियो त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी। हाणे रोज़ानो मरीज़न जो

0: प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल का खिदमत करे रहे है। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पानी की बोतल
0: 6 लीटर पानी की बोतल ब्यू पानी जो बोतल मुतारिफ कराए रो है।
1: उनका अलावा असा वीफल की सहूलत पिण सस्ते अगते मौजूद है।
0: अवा के एतमाद के कायम कंदे अवा की जरूरत जो ख्याल रखे
1: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार शादी बिन तकरीबन लाए हाने असा सा राबतो करो। असा वट मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी की सर्विस पिण मौजूद है। वधिक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 03713800392।
0: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
0: पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
0: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
3: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
0: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
0: 03132525786।
3: जी हाँ 2315525786
0: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सिंडर तंदड़ा तमाम खूबसूरत मासूम सोने समात उनकी मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल दुआओं के संबंध है, चाहतों की बारिश और लासवल खजानों के साथ दुआ है पलसी पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नीचे चक्कर जमीन से आसमान तक जिंदगी से मोह तक चांस से तारों तक हमसे खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के सामने सलामत रखे, तो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं जी एफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो ये प्रोग्राम अगर आप सुन रहे हैं हमारे साथ साथ मौजूद और सुनना चाहते हैं, खूबसूरतियां हासिल करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो बिल्कुल सही जगह पर मौजूद है। यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि आप किस तरह अपनी खूबसूरती में जो है ना वो इजाफा ला सकते हैं, किस तरह खूबसूरती का ख्याल रख सकते हैं और किस तरह आप अपनी खोई हुई खूबसूरती को वापस भी ला सकते हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आप लोगों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी और कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, कैसे इस्तेमाल करने हैं, क्यों करने हैं, ये सब बताएंगे। लेकिन कहते ना कितनी जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, तो बिल्कुल ही अपना तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स फॉर रीसेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल जी आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुकी है इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में, आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाएंगे और साथ ही साथ आप मुझे बताइए कितने सारे लोग हमारे साथ मौजूद है, कहां कहां से आप हमें सुन रहे हैं और उसके अलावा सुनने वाले जितनी भी समाते हैं सबको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया और साथ ही साथ अगर आपने हाल चाल बताते जाइए सो डियर लिसनर्स अंत के हालत उन कैसे ही आपकी हालत उन उम्मीद शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करी होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ली हैं। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी तीन बजे तक, यानी कि दो घंटे हमारे पास मौजूद होंगे। इन दो घंटों में हम करेंगे जी इन्नी वाली बात, तो दो घंटे हम आप लोगों के साथ मौजूद रहेंगे इसी उम्मीद के साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, फन करेंगे, बातें होंगी, खूबसूरती की बातें होंगी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी। और यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सो भी अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सदर आली बोस आपके होंठों पर 440 उल्की इस्तेमाल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की इस्तेमाल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करेंगे जी आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कलाम के साथ। तो बहुत प्यारा कलाम हम सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं आज के प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।

0: नोटिफिकेशन टी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जिसे आपने लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर कर देना है। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ये तीनों काम लाजमी किया करें, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डाडो जरूरी है बाबा, डाडो जरूरी। ओके जी, तो मुझे जल्दी से बताइए, अगर आपको मौका मिल रहा हो, अगर आप फर्ज के लिए ऐसा हो जाए कि आप अपनी बचपन में चले जाएं, तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं? इसी के साथ साथ अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मुझे वो भी बताइए। अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिल रहे हैं तो मुझे बताइए आपने कौन सा प्रोडक्ट इंतखाब कर लिया है, कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो आप सोच रहे हैं कि भाई जान हम लगाएंगे, तो भाई जान लगाइए ना, किसने मना किया, जल्दी से लगाइए और खूबसूरत हो जाइए। इसके साथ साथ आदल हुसैन हमारे साथ माजो दीदी, सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। ठीक कहते हैं कि बिन किस्मन जा माणो भली केतरो भी अरूज ते पहुचन पर कदें भी इज्जत इज्जतदार नथा थी सघन, हिकड़ो पाण खे जोरी मोहतबर सॼाईंदड़ नियत जा पली तहाओ। सही आयो सही। सूफिया ने हमारे साथ माजो दी, वालेकुम अस्सलाम, कहती कैसी आप? मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसे हैं? और हैप्पी कहती है सलाम माय स्वीट आरजे सिद्रा, आप कैसी है, तबियत कैसी है, वेलकम टू शो, आपको भी वेलकम कहा जाता है। मीर तारिक बलोच हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। मीर तारिक बलोच लाड़काना जो प्रोग्राम बुधन पाया, सो मोहब्बतों प्यारे भाज हूँ। और ये हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप ही सिद्रा, क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसा मुस्कुराता रखे। रुखसार मेरी फ्रॉम मीरपुर खास, रुखसार आपको वेलकम कहा जाता है। सुफियान भाई आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू। अच्छा अखलाक भाई आ चुके, अखलाक भाई वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम। पोस्ट को लाइक और शेयर करें जरा। और अनवर भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, भेण सिद्रा अज मुझो जन्म दियारो आहे, सो जिमिनी खे बुधायो सी तही न्यापो मोकलियो आहे। प्यारा अनवर अली, तवां खे तुंजे जन्म दिन जो दिली मुबारको, दुआ आहे तही नव साल तवांजे जिंदगी में बेशुमार कामयाबियों, सुठी सेहत ऐं खुशियूं वठी अचे। तवांजी जिमिनी एडी सुठी सिंधी ॻाल्हाईंदी आहे, असीं त कोन थी ॻाल्हाए। चलो सही आ सही आ, तव्हां खे हैप्पी बर्थडे हुजे बाबा, असां हैप्पी बर्थडे चवंदासीं। ऐं तव्हां जे लाइ मिड़े गानड़ो शानड़ो बि हलाईंदासीं, थोरो सबर कयो तव्हां, ठीकु आहे? ऐं तव्हां व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल बि करे सघो था। हज़ार भाई आ चुके, वालेकुम अस्सलाम अदी सिदरा, हांजी शो भलो आ, सो तव्हां खे चवंदा भली करे आया। और हमारे साथ मोहम्मद ताहिर लुंड भाई, आपको भी वेलकम एंड खुश आमदीद। नज़ीर कोसो में सुन रहे हैं बलोचिस्तान से, भाईजान आप क्या कहते हैं? लिखते हैं इंसान खुद को आईने में वही दिखाता है जो देखना चाहता है, ना कि वो जो हकीकत में है। अगर अंदाज अंदर खराबी हो तो तारीफ दिखावा और झूठा हुस्न किसी काम का नहीं होता। हाँ बाबा सही था। और हमारे साथ ही जी किशोर भाई कहते हैं एतबार की हद पूछते हो तो सुनो, एतबार की हद पूछते हो तो सुनो, दुनिया का कोई भी शख्स हमें तुम्हारे खिलाफ नहीं कर सकता। सलाम अदा हाजिर स्मार्ट हाजिरा एतबार से एतबार माणू या फिर हो एतबार जो असली हूं है, सो तवा के चौदह भली कर आया एतबार से। और ऐसे ही आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए जी, बताइए कौन कौन कहां कहां से हमारे साथ मौजूद है, टॉपिक को फॉलो कीजिएगा और हमारी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ साथ यहां पर टाइम हो जाता है, हम जरा जाएंगे जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, बस बैठे रहिएगा हमारे साथ, मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा,
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रखे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
7: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03132525786।
5: जी हा 2315-2575-786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

लोगों की स्किन को जो है ना वो हेल्दी बनाती है, आपकी स्किन का ख्याल रखते हैं। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम लगाते साथ आपकी स्किन जो है वो रिफ्रेश हो जाती है और आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाती है और आपको एहसास होता है कि आप वाकई कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के साथ आपको व्हाइट एश का ब्यूटी सोप मिल रहा है, व्हाइट एश का फेस वॉश मिल रहा है और उसके अलावा डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्ने ट्यूब है और व्हाइट एश लवली क्रीम है। ये इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोगों को ये चीज बताते चलूं, अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम लगाना चाहते हैं तो ये एक नाइट क्रीम है, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन सोप अगर आप कोई भी अच्छा सा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए व्हाइट एश का ब्यूटी सोप अवेलेबल है और साथ ही साथ आपको व्हाइट एश में जो है ना वो फेस वॉश भी मिल रहा है। तो फेस वॉश भी अगर आप लेना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। व्हाइट एश का जो फेस वॉश है ना वो विटामिन सी से तैयार किया गया है, जो कि आपके चेहरे पर अगर विटामिन सी की कमी होगी ना तो उसका भी पूरा इंतजाम है जनाब। और उसके अलावा व्हाइट एश फेस वॉश के अंदर विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ई भी ऐड की गई है और उसके अलावा ये इतना क्रीमी फेस वॉश है। तो जनाब आप जरूर अगर कोई अच्छा सा फेस वॉश और अच्छा सा सोप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एश फेस वॉश और व्हाइट एश का जो सोप है वो आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए मर्द हजरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए व्हाइट एश का डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्ने ट्यूब भी अवेलेबल है मार्केट में। तो डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्ने ट्यूब अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताते चले। तो व्हाइट एश का ये डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्ने ट्यूब है, अगर आप परचेज करने जाते हैं तो आप डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्ने ट्यूब कहकर इसे परचेज कर सकते हैं, जो कि मेडिकल डेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि फुल जड़ी बूटियों से इसे तैयार किया गया है। ये जनाब काम ये करता है कि आपके चेहरे पर जो एकनी होते ना, जिद्दी एकनी या फिर एकनी के निशानात, कोई कट का निशान है, कोई जलने का निशान है, कोई ऐसा निशान बचपन से लेकर आप घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलता जो कि हम इस्तेमाल करें तो हमारे चेहरे पर ये निशानात हो, ये जितने भी मार्क्स आ जाते हैं या फिर कोई चोट का निशान भी अगर आपके स्किन के ऊपर मौजूद है तो वो तमाम हट जाएंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब। तो डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब आप नाम लेकर तलब कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है और ये पर्सनली मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि भाई मेरी भी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है और मेरे चेहरे पर भी एकनी जो है ना वो आते हैं तो फिर जाने का नाम नहीं लेते। अगर एकनी एक मरतबा आ गया होता है ना तो वो अपना बहुत एक जिद्दी सा निशान भी छोड़कर जाता है। तो डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब जो कि आपके चेहरे के एकनी का भी खात्मा करता है, आपके चेहरे पर जो निशानात है उनका भी खात्मा करता है और कुल मिलाकर बहुत अच्छा सा आपको रिजल्ट देता है। आपकी स्किन बेदाग हो जाती है, क्लियर हो जाती है और परफेक्ट आपको हसन मिल जाता है। तो डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब आप इस्तेमाल करके देखिए, बहुत अच्छी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये है कि आप सुबह को भी लगाएंगे और रात को भी लगाएंगे, यानी कि दो मरतबा लगाइए। लगाने से पहले अपना फेस वॉश लाजमी कीजिएगा और अच्छे से अपने हाथों को भी क्लीन कीजिएगा, क्योंकि अच्छे और धुले हुए हाथ होते हैं ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आपके हाथ जो होते ना वो साफ क्लीन होते हैं तो आपके चेहरे पर जो है ना ये बार बार आप हाथ लगाते हैं तो उससे भी एकनी बनते हैं। तो आप बार बार फेस पर हाथ नहीं लगाया करें, अगर आप हाथ लगा रहे हैं तो आपका हाथ जो है ना वो क्लीन होना चाहिए, अच्छे से आप धोएं अपने हाथ को क्लीन करें, उसके बाद अपने चेहरे पर जो है डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करें। ये जी तमाम वो प्रोडक्ट हैं जो कि ऑल स्किन के मुताबिक तैयार हैं और नेचुरल अज्जा से तैयार किए गए हैं। आप लोगों के लिए कोई भी इसके अंदर ऐसा नुकसानदार अज्जा नहीं एड है कि आप लोगों की स्किन को नुकसान पहुंचाएंगे, बहुत अच्छे बहुत ही सोबर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। तो आप ट्राई करके देखिएगा और इसके साथ साथ ना मिलने की सूरत में आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अगर अवेलेबल अभी तक नहीं हुए हैं तो नहीं मिल रहे तो उसके लिए आपको नंबर बताते हैं जिसके ऊपर आप राबता करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा सकते हैं। तो नंबर से जरा नोट करते जाइए। ओके जनाब, 0332738 4309 0332738 4309 और दूसरा नंबर है 0312502597 0312502597। ये नंबर से जो कि आपकी आसानी के लिए है, बिल्कुल
بالکل سی آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر جا کے یہ تمام پروڈکٹ جو ہے نا وہ اویلیبل کرا سکتے ہیں. ان کو بولیے بھائی صاحب یہ وائٹ ایج کے تمام پروڈکٹس آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر ملنی چاہیے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے, آپ کے آس پاس جتنے بھی لوگ رہتے ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے. تو جلدی جلدی سے آپ اویلیبل کرائیے, استعمال کیجیے, کیونکہ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس آپ کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. استعمال کیجیے اور خوبصورتیاں حاصل کیجیے. تو ذرا ہم یہاں پر گانے بھی سنتے جائیں گے. میں نے یہ گانے لگائے ہیں ذرا لسٹ میں, تو ہم ساتھ ساتھ یہ گانے بھی سنیں گے. اج مجھے دل سے تو بس ہی وارو گانوں بدھوں تھا, چھو تو پرانا گانا بدھنے میں بھی پینجو مزو ہے. سو یہ تمام خوبصورت گانوں ہے جو اچھو تو ملی کر انجوائے کیوں تھا. تمام جا میسجز آئے وہ بھی پڑھی بیٹھوں تھا.

अच्छा बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। बताइए कौन कौन हमारे साथ मौजूद है, कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं। नियाज हुसैन मलिक भाई हमारे साथ है। नियाज हुसैन मलिक भाई क्या कहते हैं, हेलो जी हेलो। और अली मुर्तजा आ चुके हैं, सलाम गुड आफ्टरनून हिव। अच्छा हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ, आप बताएं अली मुर्तजा आप कैसे हैं। और मूसा कोरी कहती है सलाम अलैकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। हजार भाई कहते हैं हम भी आपके साथ साथ हैं, शो लाजवाब बेहतरीन जबरदस्त। थैंक यू हजार भाई। अच्छा ना खाला वहाँ हजार भाई कहते हैं सिस्टर मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को सलाम, आपकी तबीयत कैसी है। हम सब ठीक हैं माशाल्लाह जी, माशाल्लाह ठीक रहिए और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बराए पूछा ताका की आयो क्योंकि ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा ऐसे नारबानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम इन मुल्ला अस्सलाम मदद के लिए। ओ माय फेवरेट मैडम मुस्कान लाड़कना की पहचान कैसी आप और आपकी तबीयत कैसी है। माँ भी पापा सफा भली आया, काम बताया की आयो। अखलाक भाई कहते हैं कि टॉपिक आंसर बचपन वापस न पापा न वरी मेयू चारणी पवंदी मन तक मेयू चारा हो या।

लाइ घुमो पाण खे ऐं वाइटी सां प्रोडक्ट लॻायो बाबा वाइटी जे प्रोडक्ट में वॾो असरु अथव लुबी हमारे साथ मौजूद है लुबी कहती है सलाम अलैकुम सिडो जानी क्या हाल चाल है मैं भी आपके साथ साथ बहुत दिनों के बाद आज फिर से शामिल हुई हूँ कहाँ थी तुम वैसे बताओ तो अतो न पतो हैरानी अच्छा ये असदुल्ला अब्बास हमारे साथ कहते हाय हेलो नसरुल्ला सुमरो भाई हमारे साथ कहते माँ अगर कोई किताब लिखियो तो गेरन के पांजो पांजन के गेर लिखंदस सेम हेयर मामी मामी मामी पांजन एडा कम करी करी करी नफरत कराए छी पान का मुखे लगे दो ये सिर्फ असा सा है पर ना बाबा सब बता पाया है और न खाए लावा अच्छा मीर तारिक बलोच कहते हैं मीर तारिक बलोच लाड़काना खां मेहरबानी करी असां के सरमन सिंधी जो सॉन्ग बुधाए जो बिल्कुल बिल्कुल मां कोशिश कयां थी तांजी पसंद जा गाना हलाइंदासी और मूसा कोरी भाई कहते हैं अदी क्रीम कारे के अच्छो करे थी बिल्कुल बाबा करे थी अच्छो करे छींदी सफा चिमकाए छींदी तांजे चेहरे के तो तां व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे दिसजो गाने जे असां बचपन में ॿुधंदासीं बचपन में असां इलाही डिस्को सॉन्ग्स हूंदा

आईटी जो कड़ो प्रोडक्ट लगायो पया यो भी तो मुझे बुधाईंदा हलो नी। अच्छा किशोर भाई कहते हैं टॉपिक में अपने बचपन की वो हसीन दिन रोज फील करता हूँ। 8, 9, और 10 क्लास के स्कूल के वो दिन जब मेरी छुट्टी होती थी तब अपनी बुक बेड पर फेंक कर उसके स्कूल की गेट पर खड़ा हो जाता था। या भाभी की खबर आगा बीबी बुधायांस थी कुटकी खा रहा था आगे ये न सुधर रहा था। अच्छा असदुल्ला अब्बास कहते हैं हाय आई लाइक यू शो थैंक यू। वासु भाई आ चुके हैं हेलो वासु भाई। एसन कहते हैं वैसे अज अच्छा चौथा आज आवाज क्लियर न थो अच्छे बियो एफएम गडजी वयो आ अवां सा वही गड हलन थियो ये छो यो छा

सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तावन से ये प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है. तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स दोनों ही कमाल के प्रोडक्ट्स हैं जनाब. आप कौन से इस्तेमाल करेंगी या फिर कर रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा. और इसके साथ साथ व्हाइट एज लवली क्रीम के बारे में भी आप लोगों को बताएं जो कि बहुत ज्यादा एक जरूरी और बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट है. ये तो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है तो इसके बारे में आप लोगों को मैं जरा बताती चलूं. तो व्हाइट एज लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम है. फेयरनेस क्रीम में वो क्रीमें होती हैं जिन्हें आप हर उम्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, मेकअप के तौर पर भी लगा सकते हैं. अगर आप कोई काम काज कर रहे हैं तब भी आप व्हाइट एज लवली क्रीम इस्तेमाल करके बस जाएंगे चुटकियों में रेडी हो जाएंगे. ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर आप खवातीन हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि गर्मी का मौसम आ चुका है, गर्मियों में भाई हमसे मेकअप नहीं यूज किया जाता, मेकअप नहीं लगा पाते, तो आप व्हाइट एज लवली क्रीम का थोड़ा सा मिकदार लेकर अपने चेहरे पर अप्लाई कर देंगे. ये चुटकियों में आपको रेडी कर देती है. और व्हाइट एज लवली क्रीम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए तो ये रेडियंट अल्ट्रा वाइटामिन का फार्मूला है जिसके अंदर भाई साहब 3 वाइटामिन के कैप्सूल एड किए गए हैं. और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड की गई है यानी कि आप लोगों को खूबसूरती मिले और खूबसूरती के साथ साथ आप लोगों को जो है ना वो आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहे. अगर आप व्हाइट एज लवली क्रीम लगाकर बाहर जाते हैं कोई काम काज से तो आप लोगों की स्किन पर ये जो सूरज के ये खतरनाक असरात आते हैं ना उनसे भी आपकी स्किन की जो ना वो बचत होती रहे. तो आप व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं ना सिर्फ इसलिए कि आपको खूबसूरती चाहिए बल्कि इसलिए कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहे. तो व्हाइट एज लवली क्रीम जो कि फेयरनेस क्रीम है इसे बच्चे बूढ़े जवान हर कोई इस्तेमाल कर सकता है. मर्द हज़रात ख़वातीन ऑल स्किन टाइप के लिए है. और इसी के साथ साथ मजे की बात बताऊं बिल्कुल जी, व्हाइट एज लवली क्रीम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में कभी भी यानी कि सुबह को लगाएं, दोपहर को, रात को, जब आपका दिल करे तब लगाइए. बस आप चुटकियों में रेडी हो जाएंगे और आपकी स्किन ग्लो करती रहेगी और आप हसीन हो चुके होंगे.

हमदर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, कहती माय मोस्ट फेवरेट आरजे चंदा जानी, हम कैसी है, वेलकम टू शो, आपको भी वेलकम कहा जाता है माय स्वीटी। अच्छा सालार खान हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम, कहती क्या हाल है जी, मैं सालार खान फ्रॉम कोटड़ी। सालार भाई आपको वेलकम कहा जाता है, कहते मैं कोटड़ी से शामिल हुआ हूँ, FB पर शो सुन रहा हूँ, भाईजान आपको वेलकम कहते हैं। और उसके अलावा दर्दे दिल कहती है कि मेरी दुआ है आपकी, मुबारक आंखों के सब ख्वाब हकीकत ठहरे, आमीन आमीन। वैसे मैं ख्वाब घट नजर नहीं आया, कहती है मैं भी आ गई शो में भागते भागते। अरे भाई चलो वेरो वेरो सापटो असे नसरुल्ला भाई कहते कि नो प्यार से थी बुधाए हानी मुखे भी लगे ना मैं लई प्यार से गल ही नहीं आया पर यो सिर्फ तमा लाए बेओ के जिला। वैसे मैं बड़ी क्लेशी हो रही हूं,

0: नवां सूबा असांजी ख़्वाहिश न पर पाकिस्तान जी मजबूरी आहिनि। पाकिस्तान में मसलनि जो तूफ़ान आहे। हिकु वफ़ाक ऐं चार सूबनि वारे सिस्टम सबबि वसीला घटिजी विया आहिनि। एम क्यू एम अॻवान ऐं वफ़ाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त महरूमियुनि सबबि माण्हू रियासत ख़िलाफ़ थी रहिया आहिनि। बद इंतिज़ामी सबबि ॿिए मुल्क में मसला वधी रहिया आहिनि। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फौज खे ईरान ते वॾनि हमलनि जो हुकुम ॾेई छॾियो। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जनरल मूजिबि अमेरिका ऐं इसराइल गॾियल तौर ते ईरान जी तवानाई वारनि हंधनि खे निशानो बणाइण जी रिथाबंदी करे रहिया आहिनि। ईरान ते हमला हलंदड़ हफ़्ते कंहिं बि वक़्तु थी सघनि था। काबीना खे ख़िताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो हो त अमेरिका ईरान खे ख़तरनाक तरीक़े सां निशानो बणाईंदो, जंहिं बाद ईरान ॻाल्हियुनि ऐं मुआहिदे लाइ मिनतू कंदो। हमलो करे भॼण वारो दौर ख़तम थी चुको। ग़लति अंदाज़ो लॻाए थींदड़ कार्रवाई जा नतीजा भोगणा पवंदा। ईरानी फ़ौज अमेरिका ऐं इसराइल खे ख़बरदार करे छॾियो। ख़ातमुल नबिया हेडक्वार्टर जे आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अब्दुलहई चयो आहे त अमेरिका ऐं संदसि भाड़े जे फ़ौजियुनि खे अंदाज़ो थी वियो हूंदो त संदन सामान में कफ़न लाज़मी शामिल हुअण घुर्जे। ईरानी फ़ौज वटि दिफ़ाई सलाहियत बि आहे। इरादो ऐं भरपूर जवाब ॾियण जी सघ बि मौजूद आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
8: ख़ुशख़बरी پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن کے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر ازا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹرانی اولاد جو نہ تھن عورتن جی مخصوص بیمارن جو علاج بار جو نہ تھن بانج پن
5: ڈاکٹر ازا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹرانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھندا نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری فارمیسی

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़।

भी सिद्रा आपके साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे, अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं। आप हमें मैसेज कर रहे हैं 8881 पर, या फिर आप हमें कमेंट कर रहे हैं हमारे फेसबुक पेज के ऊपर। सही है जी, तो शामिल प्रोग्राम होते जाइए और यहाँ पर हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में। तो आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। ओके जी, तो मैंने आज आप लोगों से सवाल ये पूछ लिया है कि आप मुझे बताएं, फर्स्टली अगर आप लोगों को आपका बचपन वापस मिल रहा हो, आप अपने बचपन में वापस जाना चाहते हैं या फिर आप वापस चले जाएं, तो आप पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने बचपन में जाकर क्या करने वाले हैं? इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद रहना चाहते हैं तो 8881 और फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन करते जाइए। फेसबुक वाली पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए। ओके जी, आप जरा शामिल प्रोग्राम हो जाइए, टॉपिक को फॉलो कीजिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद प्रोडक्ट साबित होगा। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बताएंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि भाई आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक इसे तैयार किया गया है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की सबसे बेहतरीन बात यह है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार की गई है, यानी कि इसे जो तैयार किया गया है फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। ये दो प्रोडक्ट अभी मार्केट में आए हैं, मार्केट में इन है जनाब, आप कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बताते चलें कि ये किस तरह की क्रीम है, इसे आप क्यों इस्तेमाल करेंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बताएं तो जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है एक ऐसी ब्यूटी क्रीम है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो सेंसिटिव स्किन होती है उसे भी रिपेयर कर देती है। अक्सर औकात हम इस चीज को लेकर भी बड़ा परेशान हो जाते हैं कि हमारी अगर स्किन सेंसिटिव हो तो सेंसिटिव स्किन के ऊपर जो ना हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमारी सेंसिटिव स्किन कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं कर पाती है। तो आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मार्केट में इन हो चुकी है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर जो है ना विटामिन ई बीट्स है, माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें हैं जो कि आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को डीपली क्लीन करती हैं, आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करती हैं और आपकी स्किन के अंदर तक जो है ना जाकर आपके चेहरे पर जितने मसाइल हैं वो सारे खत्म कर देती हैं। तो अगर आपके चेहरे पर रिंकल्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, आपकी रंगत जो है वो सांवली हो चुकी है, चेहरे पर एक्ने प्रॉब्लम है, एक्ने के निशानात है, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके अपने चेहरे पर ये प्रॉब्लम्स भी दूर कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी स्किन जो है वो गोरी भी हो जाएगी। मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है डी स्किन ब्यूटी क्रीम को। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर जनाब इस क्रीम को तैयार किया गया है। तो कोई टेंशन की, कोई घबराने वाली बात भी नहीं है, ऑल स्किन के लिए है जनाब। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंसिटिव स्किन वाले लोग लगाएंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम को, सारे लोग ही लगा सकते हैं, जितने भी लोग आप हमें सुन रहे हैं बिल्कुल जी, आप सब लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। और जनाब डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, इसकी तो मैं क्या ही आप लोगों को बात बताऊं, ये इतना प्यारा फेस वॉश है ना, कैसे आप लगाते हैं तो आप लोगों को एक ऐसा एहसास होता है कि भाई आप कितना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश, ये दोनों जो चीजें हैं ना, ये जनाब इतनी प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि भाई वाह वाह, अमीरन वाली फीलिंग अचानक स्टार्ट थी गई है। तो मुनासिब कीमतन में तवा के मिलन पया डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। एंड डी स्किन फेस वॉश एक ऑयल हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार थे लाए, जेको तवा जी स्किन के क्लीन कंदो आए, मॉइस्चराइज कंदो आए, एंड तवा जी स्किन के हाइड्रेट भी रखंदो आए। सो इतना सारा फायदा है बाबा, तवा छोंता फायदो वठो, एंड तवा डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कयो, डी स्किन फेस वॉश लगायो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाइट क्रीम आए, सुन के तवा राजे टाइम इस्तेमाल करना है। तवा जी अगर करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल ना है तो बाबा तवा के भी नंबर से राबतो करो पवो, नंबर से राबतो करी तां करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन फेस वॉश एंड वाइट टी तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए सको था। सो नंबर आ 03 12 50 25 907, आई बो नंबर आ 03 27 38 43 09। ही नंबर आइन अगर एकड़ो बंद हों तो बो खोले डूंदो, ता एक न ते ता राबतो करे डिसो, एन के बुधायो तो बाबा ता केड़ी जगह ते मौजूद आयो, ए किथे किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले, जी हु अवेलेबल कराए सगन, समझो था। सो अवेलेबल करायो पांजे करीबी जनरल स्टोर से, तवा के वठण में आसानी थी, तवा के आसपास के माण्हुनि के भी वठण में आसानी थे, ए हर तरफ सिर्फ चर्चा हो जन डी स्किन ब्यूटी क्रीम ए डी स्किन फेस वॉश। वाह बाबा,
कमाल जा प्रोडक्ट आहिनि। सो तव्हां ट्राए करे ॾिसो, पंहिंजे ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो।

0: पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए, बताइए कहाँ कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं और कितने सारे प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सालार खान कहते हैं बचपन बहुत अच्छा गुजरा, क्या बात है जी। और दीदार अली बिरोही कहते हैं अर्ज करता हूँ तेरे इश्क में मिलावट है इत्र और शराब की, कभी हम महक जाते हैं तो कभी हम बहक जाते हैं। ओके जी क्या बात है, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा मोहम्मद इब्राहिम नोहरी भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। अच्छा ऐसा तुम फेसबुक से बुद्धि वठंदा कयो नी असां के बाबा, फेसबुक से असां जो आवाज क्लियर इंदो आहे ये ना। अच्छा दर्दे दिल कहती है बचपन में जब अम्मी जबरदस्ती स्कूल भेजती थी तो पड़ोसियों के घर की घंटी बजाते हुए जाते थे गुस्से में। अम्मी जो गुस्सो मना उन्हें माँ कटना हो यार। सही सही सही सही। अच्छा किशोर भाई कहते हैं काम काज नहीं मैं सिर्फ काम करता हूँ, काज दर्जी पानी कराइंदो आ। या भी गाल है मु करे सोचो कौन हो। अब्दुल रहमान हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम तमाम बुधो पया लाड़कानी खान तमाम जो प्रोग्राम भलो आए जी, थैंक यू सो मच। आबिद परियास्ती हमारे साथ सो गुड शो, थैंक यू। अच्छा हिप्पी कहती आज मेरी दोस्त आपके बारे में पूछ रही थी तो मैंने भी बताया आपके बारे में, उसको समझ नहीं आ रही थी कि प्रोग्राम में शामिल कैसे होना होता है, मैं बता के प्रोग्राम में कैसे शामिल होता मैंने बताया कि प्रोग्राम में कैसे शामिल होना होता है। वैसे मेरी दोस्त भी आपका शो सुनती है, वो भी जल्द आपके प्रोग्राम में शामिल होगी। चलें जी उनको भी मोस्ट वेलकम किया जाएगा और आप दोनों को बहुत शुक्रिया वेलकम के साथ।
1: कर दिए बलिए गल्ला समझा मैं तेरी अखियां दी ना, शुक्र करा उस मालिक दे जिने दित्ती।
0: अब्दुल रहमान कहते कैसी है, मैं ठीक हूँ जी आप बताएं। पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने के बारे में जरा सोचिए। अनवर भाई कहते हैं टॉपिक नो टेंशन नो क्राई, नो बिजली के बिल का खौफ, ना जॉब की चिक चिक और ना ही जिंदगी में क्या करना है वाली वजूदी बहरान। पिज्जा का आखिरी स्लाइस छीन कर खा लो तो कोई कुछ नहीं बोलता, बस बोलेंगे बच्चा है खाने दो, 10 रुपए में बादशाह थी, जेब में 10 रुपए का नोट होगा और तुम्हारी वॉक ऐसी रहेगी जैसे पूरे मोहल्ले के सीईओ तुम ही हो। हाँ भाई बात में वैसे दम तो था, ऐसा ही होता है। बचपन के दिन जो है ना वो बहुत कमाल के दिन थे। अगर किसी का बचपन अच्छा ना भी गुजरा हो ना लेकिन फिर भी वो आज के टाइम में अपना बचपन याद करके ये जरूर बोलेगा कि हाय बचपन बचपन था।

ओके प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो. बुधायो कड़ो प्रोडक्ट लगायो पया. अली मुर्तजा कहते हैं टॉपिक पर बचपन वापस मिल जाए तो बहुत कुछ है. उनमें से एक चीज जून जुलाई की छुट्टियां जो हमेशा गांव में गुजरती थी, खुली फिजा, खुले मैदान और क्रिकेट खेलना. क्या बात है. अच्छा कहते हैं सॉन्ग प्ले करना शमन मिराली ही हसी जिंदगी ये गुजरी वही है हे हलायूं था बिल्कुल योगा. मूसा भाई कहते हैं अदी पकोड़ा खाओ कराची जा मावे से कराची जा पकोड़ा कौन खाता है. सोता खाओ बाबा खाओ मुंह आसानी करे खाए जो सही है. गोलू भाई कहते हैं चवंदा आहिन सबर जो फल मिठो हुंदो आ पर मुखे अन्या ताई न मिलियो आ लगे तो हाँ बिल्कुल तमाज नसीब में जूस हुंदो.

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो ना, जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, सॉन्ग सुना दो ब्रहवी। ओके मैं कोशिश करती हूँ आपका गाना लगाएंगे, ठीक है।

अच्छा एसन के थी पश्तो में माई प्रोग्राम थी करे सब दुआ कर ला करे उनजी लाइट वने हली त आवाज सही छे छा खबर उहा वने त वरा मता भी माई उनजी मथा अची वने ये भी थी सके तो बाबा प्रॉब्लम जे को सो उन जो हलियो ना है त लाइट हली वने उनन वट सोलर हुंदो जनरेटर भी हुंदन सो या टेंशन न कयो असा वांगे अमीर हुंदा उहे भी बाबा पैकेज अथन तरी तो कमेंट कन था ना बिना पैकेज जे कमेंट थिंदो अच्छा भला बुधायो तो सही मुखे अच्छा मोहसिन आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम मोहसिन अली बिरोही फ्रॉम मोर मीरो खान चौक लाड़काना से ओके जी ओके मोहसिन आपको वेलकम कहते हैं आमिर खान महेश्वर ही गोठ जकरिया महेश्वर वालेकुम अस्सलाम मास्टर मंजूर जो गानो हलायूं था बाबा हलायूं था वेहो तो सही साथ पटियो अच्छा सही गानो अनवर भाई कहते हैं घर के काम चल रहे ना इसीलिए बिजी रहता हूँ आज काम का आखिरी दिन है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा मतलब एक काम है ना यानी हमने अपने घर पर थोड़ा सा काम करवाया मतलब थोड़ा सा उसमें इतने दिन लग गए ना इतना डिस्टर्ब हो गया कि मैं अब ये दुआ करती हूँ अल्लाह करे ऐसा करे मजदूर जो मुंह न ॾिसो ॾाढी घी लॻंदा आहिनि तो उन्हनि माण्हुनि खे शाबाश आहे जेके स्टार्टिंग खां वठी घर ठाराहिनि था अगली तव्हांजे सबर खे सलाम आहे

ओके जी गानो डाडो भलो आ गानो एंजॉय के पियो ना अलावा तमा अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल अना ताई कोन कयो तो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम सा अगर तमा के डी स्किन फेस वॉश भी मिली रयो आए बाबा एंड अगर तमा बई चीजू गड इस्तेमाल कना तो वाह वाह थी मिली छ तमा जे खूबसूरती के जरूरत आहे कुछ एड़ा प्रोडक्ट होजन तमा वट जेके तमा जे खूबसूरती जो ख्याल भी रखन तमा जे खूबसूरती के वधाइंदा भी रहन सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे जेका विटामिन ई बीड्स माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन सा तैयार थे लाए एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी सब का बेहतरीन गाल बुधाए तो तमा के डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका है सिर्फ ब रात में रिजल्ट देने वाली है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तमा इस्तेमाल कयो पया तो ब रातू अगर तमा इस्तेमाल कना तो तमा के भलो रिजल्ट मिली वेनो एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका मेडिकेटेड फॉर्मुले से तैयार थे लाए यानी कि डॉक्टर की निगरानी में तैयार कयो था तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा ट्राई करे दिसो बाबा सफा भली क्रीम तव तमा के मजो अची वेनो एंड तमा सेंसिटिव स्किन ते भी लगाए सको था डॉक्टर जे मशवरे से अगर तमा कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कना तो तमा के फुल यकीन हो जाते ने जो असा के असर भलो मिलनो तो बिल्कुल जेका डी स्किन ब्यूटी क्रीम आए ना के डॉक्टर्स ही तैयार कयो आए तो तमा लाजमी ट्राई करे दिसो तमा के सफा भलो छ सफा भले मा भलो रिजल्ट मिली वेनो सो तमा ट्राई करे दिसो डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तमा के डी स्किन फेस वॉश मिली रयो आए देखो हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार थे लाए तमा जी स्किन के हाइड्रेट कंदो आए तमा जी स्किन के क्लीन कंदो आए एंड तमा जी स्किन के मॉइस्चराइज भी कंदो आए सो डी स्किन फेस वॉश एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम बई चीजों गड लगायो जे तमा सफा खूबसूरत थी वे अगर तमा जी एरिया में नाहन अवेलेबल तो कोई बाबा तमा के डायल करनो आए 03125025907 एंड यो नंबर आए 03273834309 ही बई नंबर तमा पांचे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराने के लिए डायल करे सको था एको नंबर बिजी हों या बंद हों तो बो नंबर तमा के आराम से तमा की गाल के बुधन तो तमा उनन के बुधायो बाबा केड़ी केड़ी जगह थे डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड वाइट एज प्रोडक्ट्स अवेलेबल ना जे उनन के भी आसानी थी वने वो अवेलेबल कराएं एंड तमा भी उतां बस आराम से वनो वेठी अचो ठीक है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कयो एंड वाइट एज प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कयो सब तमा जी स्किन के मुताबिक आ है तमा के खूबसूरती दींदा एंड तमा सोना सोना थी वेंदा ओके जी सो अनवर भा तमा जो हैप्पी बर्थडे आहे सो ही स्पेशल सॉन्ग मा तमा जिला लिस्ट में लगायो आहे तमा के हैप्पी बर्थडे असाय तरफा असाय पूरी टीम जे तरफा खुश हो जो सलामत हो जो ऐसा सगड़ हो जो

पैनल से कहो खाली मैसेज मिलो है मुख्य अगर न पढ़ा तो समझी वनो यो ओ यो मैसेज मुझो हो समझो था। और हमारे साथ रसूलाबाद का आबिद हुसैन शंबानी भाई वालेकुम अस्सलाम। टॉपिक माँ अमर की झोली माँ ओके जी तवां जे डी जी शुरुआत अमर जी झोली से थी। हाँ ओके ओके डाडो भलो तवां मैसेज कयो आहे अगते थोड़ी गाल थोड़ी समझ में ना आई। और उन का अलावा तवां बयो मैसेज कयो आहे बचपन में मु ट्रैक्टर जी स्पीकर ते देखो परे खा पेरियो गानो बुधंदो हो जलाल जी आवाज में वो बुधंदो से वाह वाह वाह वाह। मकसूद मला कहते हैं जवाब है आई एम सॉरी मैं अपने बचपन में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने अपने बचपन में बहुत लड़ाइयां की हैं। अगर गया वापस तो वो लड़के मुझे छोड़ेंगे नहीं एड़ा कम कया बचपन में ताकि अन्या बहुत हो गए। अच्छा सजाद अली जमाली है नवाब शाह से सॉन्ग प्ले करना मुमताज मलिक भा मैं कोशिश क्या थी न तो पंजी बजे वाली प्रोग्रामों में बुद्धि बैठना।

क्या बात है, बहुत ही हसीन सा गाना सुना। एक और हसीन सा गाना हमारे लिस्ट में है, तो आइए जरा इस गाने को भी सुन लेते हैं। प्रोग्राम सुन रहे हैं White Edge and D-Skin Beauty Show, sponsored by White Edge Beauty Products and D-Skin Beauty Products। आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं बताइए।

0: अच्छा एसके हमें सुन रहे हैं मोरो से, आपने हमें ज्वाइन किया है और आपके साथ हैं जी मानिक अबड़ो, सदाम अबड़ो, दिलबर और उसके बाद मैं से थोड़ा इधर उधर हो गया है आपका, तो थैंक यू सो मच, आप सब भाइयों को वेलकम कहते हैं। अच्छा गो टू गुलाब लगारी खां, साबिर लगारी हमारे साथ है, सुल्तान लगारी, रिजवान लगारी, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम इन द शो, नाइस है प्लीज प्ले सूर्या सुमरो, मैं कोशिश करती हूँ भाई आपका गाना भी लगाएंगे। और जाग जाने चाचू को हमारे साथ कहते हैं प्लीज प्ले
1: यार मतो।
0: ओके अंकल तुम्हारा गानों डेडिकेट कर हुआ है अजरा खुसू जे नाले, सजा चमाली कहते नवाबशाह से सॉन्ग प्ले करे, ममताज मलाई हाजिर हाजिर भाई।

आप प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। इस्तेमाल कीजिए व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, जिनका आप इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपनी खूबसूरती का ख्याल रख सकते हैं बल्कि आप अपनी खूबसूरती को हमेशा के लिए लॉक भी कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आपको बताए जाते हैं जो आपकी खूबसूरती में ऐसा होता है कि जल्दी में आपको गोरा बना देते हैं, लेकिन बाद में उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपके स्किन पर आ जाते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए जो कि मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार की गई है और हाँ, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार की गई है। बस सो तवां भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सको था बाबा, कोई भी अड़ो नाए तो तवां जी स्किन खराब थी वही या कोई अड़ो मसलो अची वे तो तवां सफा बेफिक्र थी करे लगाए सको था। अच्छा हैप्पी कहती हैं आरजे, आपका बचपन कैसा गुजरा, अच्छा था या बुरा? मेरा बचपन बस ठीक ठाक ही था, ना बुरा था ना अच्छा था। लेकिन देखा जाए तो मैं अपने कॉलेज के डेज को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मेरा पूरा जो बचपन था वो जरा मैं इंट्रोवर्ट टाइप की बंदी हूँ, मैं ज्यादातर लोगों में जो है ना वो मिलकर बैठ नहीं सकती, मुझे थोड़ा सा फोबिया है ऐसा समझ ले। तो कॉलेज के टाइम में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया लोगों को फेस करने का, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, तो ऐसा वाला सीन कॉलेज टाइम मेरा ऐसा समझ ले लाइफ का बेस्ट टाइम था।

0: गाना मैं जब भी सुनती हूँ तो पता नहीं क्यों इमोशनल हो जाती हूँ. बहुत अच्छा एक ये गाना है और उन खां अलावा ही गानो सभी जो फेवरेट हूँ मुख्य तो ये लगे है. अच्छा ये हमारे साथ है हमदुल्ला मला खेल. कहते हैं रोजाना ऐसी कोई एक नेकी जरूर किया करें जिसका गवाह बस आपका रब हो. क्या बात है. और अनवर भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं. हमदुल्ला मला खेल आप हमें कोयटा से सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया. और अली मुर्तजा लिखते हैं कि हमसे मत उलझो कि अब हम सरा पाए सवाल भी हैं और हाजिर जवाब भी हैं. ऐसा ही होना चाहिए. ओके जी अली अकबर ब्रोही भाई हमें सुन रहे हैं सकरेंट से थैंक यू वेरी मच. एस एन अली बुक्टी हमें सुन रहे हैं लाड़काना से थैंक यू. दीदार अली ब्रोही आप हमारे साथ साथ हैं. हजार भाई कहते अदी थी सगे ही सॉन्ग लगाए जो यो गानो अगर हिन्ना प्रोग्राम में नया तो आप पंजे बजे वाले प्रोग्राम बुधूँ था ठीक है. अच्छा ममताज तुम्हारा शायरी लिखी है तो थैंक यू थैंक यू. दीदार अली बिरोही भा तवाजो मोबतुआन प्रोग्राम बुध पाया. अख्तियार अली सिंधी हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम. रमजान भाई आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम. रमजान भाई कैसे हैं. वक्त अली सियाल भाई हेलो. वासव भाई कहते अदी सिद्धो बिल्कुल नंढपिण भली हुई हाने याद थी अचे जदे असा सब गोठ जा बार गड थी मिट्टी ते रांद खेड़ा हुआ सी जदे रांद बस कंदा हुआ सी हिक बे खे मिट्टी जा बुक भरे हणंदा हुआ सी. अनवर भा कोई बात नहीं आप भी हमेशा खुश रहें. अच्छा नसरुल्ला भाई कहते हैं बाजी तां की खबर आ माँ एक बदक वठी आई आया बदक छो वठी आया है. रीजन चाइना जी पोया लुबी कहती सिडो दो घंटा गुजरी वया पर पता ही कौन चला. हाँ बाबा दिसो ब घंटा ये गुजरी ना ताकि खबर ही कौन पड़ी. एमन सारी कहते हैं हल काश बचपन वापस मिले आप असांत फर्जी करे सकूं था हमने भी बड़ी डोर.
1: It's 3 PM. This time check is brought to you by

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फौज ए चीन जे पीपल्स लिबरेशन आर्मी खिते जे अमुन लाए हकीकी भाईवार आहिन। पाक चीन दोस्ती बेहरहाल सूरत में एक साबित कदम ऐं मजबूत रही आहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी जे 99 सालगिरह मल्हाई वई। चीनी सफीर समेत पाकिस्तान जे हथियारबंद फौजन जे सरबराहन जी भी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो त पाक फौज ऐं पीपल्स लिबरेशन आर्मी इलाइक़े अमुन इस्तेकाम ऐं गडि॒यल स्टेट जग मुफ़ादन जे तहफ़ुज़ लाइ पुरअज़म आहे।
2: आप ये बात करेंगे कि वो पहली दफा धांधली से वजीर आजम बने थे, तो फिर आप याद करें यहाँ पे ये भी बात होती है कि कोई पहली दफा मुल्क तोड़ के भी वजीर आजम बना था। अगर वजीर आजम ने जो वोट लिए उन वोटों को आप अगर फॉर्म 47 का कहते हैं, तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के? जरदारी साहब के जो बरखुरदारान हैं, एक बरखुरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं, एक हैं वो कहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है, ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। ओ भाई, इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है, ये चल नहीं सकता।
1: वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनावला जो पीपल्स पार्टी ते वार। शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो खे मुर्ग टोड़े वज़ीर आज़म थियण जो तानो ॾेई छॾियो। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ते बि तनक़ीद। मुज़फ़्फ़राबाद में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे राणा सनावला चयो त जेकॾहिं तव्हां नवाज़ शरीफ़ खे चवंदा त सनई धांधली करे वज़ीर आज़म थियो आहे, त पोइ हिते ही ॻाल्हि बि थींदी आहे त को मुल्क टोड़े पहिरियों भेरो वज़ीर आज़म थियो हो। वज़ीर आज़म जे वोटनि खे अवां फारम 47 जो सॾींदा त ॿुधायो सदर खे मिलियल वोट कहिड़े फारम जा आहिनि? जरदारी साहब जो बियो फर्जन चई रहियो आहे त सिस्टम खराब थी चुको आहे, अॻिते न वधी रहियो आहे। इक़्तदार जा मज़ा वठण बाद ओचितो खेनि सिस्टम ख़राब लॻण लॻो आहे, जेका अजीब ॻाल्हि आहे। नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ ऐं मरियम नवाज़ खे धांधली करे खटरायो वियो। खैरात में मिलियल सीटनि वारा पीपल्स पार्टीअ ते तनक़ीद करे रहिया आहिनि। सिंध जे सूबाई वज़ीर सैयद गनी चयो आहे त बंगलादेश थाने में शहीद भुट्टो मुलविस हुजे हा त ज़िया खे कहिड़े कूड़े केस में फाही ॾियण बदिरां बंगलादेश थाने वारे केस में फाही ॾिए हा। सूबा ठाहिण जो इख़्तियार कंहिं फर्द या पार्टी वटि न पर असेंबलियुनि वटि आहिनि। सिंध जो अवाम ऐं चूंडियल नुमाइंदा नओं सूबो नथा चाहिनि। मोहसिन नक़वी भले जेको बि चवे संदसि ॻाल्हि मञण जा पाबंद आहियूं। पीपल्स पार्टी घटि में घटि करप्शन ऐं इख़्लाक़ियात ते लेक्चर न ॾे। मरियम नवाज़ सूबे में तालीम जो बजट वधायो आहे। छा पीपल्स पार्टी सिंध में तालीम जे बजट वधाई आहे? पंजाब जे सूबाई वज़ीरनि जे पीपल्स पार्टीअ ते तनक़ीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पंजाब जे वज़ीरनि चयो त कराचीअ जा शहरी पाणीअ लाइ परेशान आहिनि। शहर जा ग्रीन बैलेट ख़त्म थी चुका आहिनि। सिहत जो सिंध में ख़राब हाल आहे। सिंध जूं हालतूं सभिनी जे साम्हूं आहिनि। मरियम नवाज़ ते तनक़ीद करण बदिरां मरियम नवाज़ जेतिरो कम त करे ॾेखारियो। नवां सूबा असांजी ख़्वाहिश न पर पाकिस्तान जी मजबूरी आहे। पाकिस्तान में मसलनि जो तूफ़ान आहे। हिकु वफ़ाक ऐं 4 सूबनि वारो सिस्टम सबबि वसीले घटिजी विया आहिनि। MQM अॻवान ऐं वफ़ाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त महरूमियुनि सबबि माण्हू रियासत ख़िलाफ़ थी रहिया आहिनि। बद इंतिज़ामी सबबि मुल्क में मसला वधी रहिया आहिनि। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फौज खे ईरान ते वॾनि हमलनि जो हुकुम ॾेई छॾियो। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल मूजिबि अमेरिका ऐं इसराइल गॾियल तौर ते ईरान जी तवानाई वारनि हंधनि खे निशानो बणाइण जी रिथाबंदी करे रहिया आहिनि। ईरान ते हमला हलंदड़ हफ़्ते कंहिं बि वक़्तु थी सघनि था। काबीना खे ख़िताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो हो त अमेरिका ईरान खे ख़तरनाक तरीक़े सां निशानो बणाईंदो, जंहिं बाद ईरान ॻाल्हियुनि ऐं मुआदे लाइ मिनतूं कंदो। हमिलो करे भॼण वारो दौर ख़त्म थी चुको। ग़लति अंदाज़ो लॻाए थींदड़ कार्रवाई जा नतीजा भोगणा पवंदा। ईरानी फ़ौज अमेरिका ऐं इसराइल खे ख़बरदार करे छडि॒यो। ख़ातिमुल नबिया हेडक्वार्टर जे आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्ला चयो आहे त अमेरिका ऐं संदसि भाड़े जे फ़ौजियुनि खे अंदाज़ो थी वियो हूंदो त संदनि सामान में कफ़न लाज़मी शामिल हुअण घुर्जे। ईरानी फ़ौज वटि दिफ़ाई सलाहियत बि आहे, इरादो ऐं भरपूर जवाब ॾियण जी सघ बि मौजूद आहे।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
9: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
10: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
9: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
10: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
9: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ असां

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: मेरा फैन।
1: White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रखे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी। मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
5: खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
7: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03125252786।
3: जी हा, 2315525786।
7: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाक फौज ए चीन जे पीपल्स लिबरेशन आर्मी खिते जे अमुन लाए हकीकी भाईवार आहिन। पाक चीन दोस्ती बेहरहाल सूरत में एक साबित कदम ए मजबूत रही आए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जीएचक्यू में पीपल्स लिबरेशन आर्मी जे 99 सालगिरह मल्हाई वही। चीनी सफीर समेत पाकिस्तान जे हथियारबंद फौजन जे सरबराहन जी भी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो त पाक फौज ए पीपल्स लिबरेशन आर्मी इलाक़े अमुन इस्तक़ाम ए गडियल स्ट्रेटजिक मुफादन जे तहफ़ुज़ लाइ पुरअज़म आहे।
2: बात करेंगे कि वो पहली दफा जांजली से वजीर आजम बने थे तो फिर आप याद करें, यहाँ पे ये भी बात होती है कि कोई पहली दफा मुल्क तोड़ के भी वजीर आजम बना था। अगर वजीर आजम ने जो वोट लिए उन वोटों को आप अगर फॉर्म 47 का कहते हैं तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के? जरदारी साहब के जो बरखुरदारान हैं, एक बरखुरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं, एक दूसरे बरखुरदार हैं वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है, ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। ओ भाई, इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है, ये चल नहीं सकता।
1: वजीर आजम के सलाहकार राणा सनाउला जो पीपल्स पार्टी से वार शहीद जुल्फकार भुट्टो के मुर्ग टोड़े वजीर आजम थियण जो तानो डेई छड्यो। घरू वजीर मोहसिन नकवी ते भी तनकीद। मुजफ्फराबाद में चूंड जलसे के खिताब कंदे राणा सनाउला चयो त जेकॾहिं तव्हां नवाज शरीफ के चवंदा त सनई धांधली करे वजीर आजम थियो आहे त पोइ हिते ही ॻाल्हि बि थींदी आहे त को मुल्क टोड़े पहिरियों भेरो वजीर आजम थियो हो। वजीर आजम जे वोटन खे अवां फारम 47 जो सॾींदा त ॿुधायो सदर खे मिलियल वोट कहिड़े फारम जा आहिनि? जरदारी साहब जो बियो फर्जन चई रहियो आहे त सिस्टम खराब थी चुको आहे, अॻिते न वधी रहियो आहे, इक़्तदार जा मज़ा वठण बाद ओचितो खेन सिस्टम ख़राब लॻण लॻो आहे, जेका अजीब ॻाल्हि आहे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ऐं मरियम नवाज खे धांधली करे खटरायो वियो। खैरात में मिलियल सीटनि वारा पीपल्स पार्टीअ ते तनक़ीद करे रहिया आहिनि। सिंध जे सूबाई वज़ीर सैद गनी चयो आहे त बंगलादेश थाने में शहीद भुट्टो मुलविस हुजे हा त ज़िया खे कहिड़े कूड़े केस में फाही ॾियण बदिरां बंगलादेश थाने वारे केस में फाही ॾिए हा। सूबा ठाहिण जो इख़्तियार कंहिं फर्द या पार्टी वटि न पर असेंबलियुनि वटि आहिनि। सिंध जो अवाम ऐं चूंडियल नुमाइंदा नओं सूबो नथा चाहिनि। मोहसिन नकवी भले जेको बि चवे संदसि ॻाल्हि मञण जा पाबंद आहियूं। पीपल्स पार्टी घट में घट करप्शन ऐं इख़्लाक़ियात ते लेक्चर तालीम जे बजट वधाई आहे। पंजाब जे सूबाई वज़ीरनि जे पीपल्स पार्टीअ ते तनक़ीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पंजाब जे वज़ीरनि चयो त कराचीअ जा शहरी पाणीअ लाइ परेशान आहिनि। शहर जा ग्रीन बैलेट ख़त्म थी चुका आहिनि। सिहत जो सिंध में ख़राब हाल आहे। सिंध जूं हालतूं सभिनी जे साम्हूं आहिनि। मरियम नवाज़ ते तनक़ीद करण बदिरां मरियम नवाज़ जेतिरो कम त करे ॾेखारियो। नवां सूबा असांजी ख़्वाहिश न पर पाकिस्तान जी मजबूरी आहे। पाकिस्तान में मसलनि जो तूफ़ान आहे। हिकु वफ़ाक ऐं 4 सूबनि वारो सिस्टम सबबि वसीले घटिजी विया आहिनि। एम क्यू एम अॻवान ऐं वफ़ाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त महरूमियुनि सबबि माण्हू रियासत ख़िलाफ़ थी रहिया आहिनि। बद इंतिज़ामी सबबि मुल्क में मसला वधी रहिया आहिनि। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फौज खे ईरान ते वॾनि हमलनि जो हुकुम ॾेई छॾियो। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल मूजिबि अमेरिका ऐं इसराइल गॾियल तौर ते ईरान जी तवानाई वारनि हंधनि खे निशानो बणाइण जी रिथाबंदी करे रहिया आहिनि। ईरान ते हमला हलंदड़ हफ़्ते कंहिं बि वक़्तु थी सघनि था। काबीना खे ख़िताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो हो त अमेरिका ईरान खे ख़तरनाक तरीक़े सां निशानो बणाईंदो, जंहिं बाद ईरान ॻाल्हियुनि ऐं मुआहिदे लाइ मिनतूं कंदो। हमलो करे भॼण वारो दौर ख़त्म थी चुको। ग़लति अंदाज़ो लॻाए थींदड़ कार्रवाई जा नतीजा भोगणा पवंदा। ईरानी फौज अमेरिका ऐं इसराइल खे ख़बरदार करे छडि॒यो। ख़ातिमुल नबिया हेडक्वार्टर जे आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्ल चयो आहे त अमेरिका ऐं संदसि भाड़े जे फौजियुनि खे अंदाज़ो थी वियो हूंदो त संदनि सामान में कफ़न लाज़मी शामिल हुअण घुर्जे। ईरानी फौज वटि दिफ़ाई सलाहियत बि आहे, इरादो ऐं भरपूर जवाब ॾियण जी सघ बि मौजूद आहे। ओमान वेझो आपने हरमुज़ में आयल टैंकर ते हमलो, इंजन खे नुक़सान पहुचण बाद महरी टैंकर सफ़र रोके छडि॒यो। बरतानवी मेरी टाइम हमले जी तसदीक करे छडी॒।

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियन औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियन, कमजोरी, आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी, आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ छा अव्हां चाहियो था? अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुन जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
7: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125-25786।
5: जी हा, 2310-3125-786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खुश खबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-842-842।
8: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
9: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
6: जी हा, 2315525786।
0: GFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मुल्क तोड़ के भी वजीर आजम बना था। अगर वजीर आजम ने जो वोट लिए उन वोटों को आप अगर फॉर्म 47 का कहते हैं तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के थे? जरदारी साहब के जो बरखुरदारान हैं, एक बरखुरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं, एक दूसरे बरखुरदार हैं वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है, ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। ओ भाई, इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है, ये चल नहीं सकता।
2: वज़ीर आज़म से सलाहकार राणा सदावला जो पीपल्स पार्टी तेवार शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के मुल्क टोड़े वज़ीर आज़म थियण जो तानो ॾेई छॾियो। करु वज़ीर मोहसिन नक़वी ते बि तनक़ीद। मुज़फ़्फ़राबाद में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे राणा सदावला चयो त जेकॾहिं तव्हां नवाज़ शरीफ़ खे चवंदा त सदाई धांधली करे वज़ीर आज़म थियो आहे त पोइ हिते ही ॻाल्हि बि थींदी आहे त को मुल्क टोड़े पहिरियों भेरो वज़ीर आज़म थियो हो। वज़ीर आज़म जे वोटनि खे अवां फॉर्म 47 जो सॾींदा आहियो त ॿुधायो सदर खे मिलियल वोट कहिड़े फॉर्म जा आहिनि? ज़रदारी साहब जो ॿियो फर्ज़न चई रहियो आहे सिस्टम खत्म थी चुको आहे, अॻिते न वधी रहियो आहे, इक़्तदार जा मज़ा वठण बाद ओचितो कयनि सिस्टम ख़राब थियण लॻो आहे, जेका अजीब ॻाल्हि आहे। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ऐं मरियम नवाज खे धांधली करे कटरायो वियो। ख़ैरात ते मिलियल सीटनि वारा बि पीपल्स पार्टी ते तनक़ीद करे रहिया आहिनि। सिंध जे सूबाई वज़ीर सईद अली चयो आहे त बंगलादेश थाने में शहीद भुट्टो मुलविस हुजे हा त ज़िया खेस कूड़े केस में फाही ॾियण बदिरां बंगलादेश थाने वारे केस में फाही ॾे हा। सूबा ठाहिण जो अख़्तियार कंहिं फर्द या पार्टी वटि न पर असेंबलियुनि वटि आहे। सिंध जो अवाम ऐं चूंडियल नुमाइंदा नओं सूबो नथा चाहिनि। मोहसिन नक़वी भली जेको चवे संदसि ॻाल्हि ॿुधण जा पाबंद न आहिनि। पीपल्स पार्टी घटि में घटि करप्शन ऐं इख़लाकियात ते त लेक्चर न ॾे। मरियम नवाज़ सूबे में तालीम जो बजट वधायो आहे। छा पीपल्स पार्टी सिंध में तालीम जी बजट वधाई आहे? पंजाब जे सूबाई वज़ीरनि जी पीपल्स पार्टी ते तनक़ीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पंजाब जे वज़ीरनि चयो त कराची जा शहरी पाणीअ लाइ परेशान आहिनि। शहर जा ग्रीन बेल्ट ख़त्म थी चुका आहिनि। सिहत जो सिंध में ख़राब हाल आहे। सिंध जूं हालतूं सभिनी जे साम्हूं आहिनि। मरियम नवाज़ ते तनक़ीद करण बदिरां मरियम नवाज़ एतिरो कम करे ॾेखारियो। नवाज़ सूबा असांजी ख़्वाहिश न पर पाकिस्तान जी मजबूरी आहिनि। पाकिस्तान में मसलनि जो तूफान आहे। हिकु वफ़ाक़ ऐं 4 सूबनि वारे सिस्टम सबबि वसीला घटिजी विया आहिनि। एम के मगवाड़ ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त महरूमियत सबबि माण्हू रियासत ख़िलाफ़ थी रहिया आहिनि। बदइंतज़ामी सबबि बि मुल्क में मसला वधी रहिया आहिनि।

0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फोर्स के ईरान ते वॾनि हमलनि जो हुकुम ॾेई छॾियो। अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल मूजिबि अमरीका ऐं इसराइल गॾियल तौर ते ईरान जी तवानाई वारनि हंधनि खे निशानो पाइण जी रिथाबंदी करे रहिया आहिनि। ईरान ते हमला हलंदड़ हफ़्ते कंहिं बि वक़्त थी सघनि था। काबीना खे ख़िताब कंदे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमरीका ईरान खे ख़तरनाक तरीक़े सां निशानो बणाईंदो, जंहिं बाद ईरान ॻाल्हियुनि ऐं मुआदे लाइ मिंटू कंदो। हमलो करे भॼण वारो दौर ख़तम थी चुको। ग़लति अंदाज़ो लॻाए थींदड़ कार्रवाई जा नतीजा भोगणा पवंदा। ईरानी फ़ौज अमरीका ऐं स्ट्राइक खे ख़बरदार करे छॾियो। ख़ातिमो लंबिया हेडक्वार्टर जे आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अब्दुल हई चयो आहे त अमरीका ऐं संदसि भाड़ी जे फ़ौजियुनि खे अंदाज़ो थी वियो हूंदो त संदनि सामान में कफ़न लाज़मी हुअण घुर्जे। ईरानी फ़ौज वटि दिफ़ाई सलाहियत बि आहे, इरादो ऐं भरपूर जवाब ॾियण जी सघ बि मौजूद आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301343842।
7: खुशख़बरी खुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु। आहे।
8: अवां जे इत्माद के कायम कंदे, अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
7: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार, शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासिल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली। छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03125257 86।
5: जी हा, 2315525786।
8: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3141-200।
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-842-842।
4: खुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125252786।
1: जी हा, 2315525786।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: दहशत गर्दन सावड़ा दे पाक फौज मेजर भी शहीद। आईएसपीआर मौजिब सिक्योरिटी फोर्सेज से गुजे कार्रवाई कर पंज भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्दन के जन्म भेड़ो कयो। शदीद फायरिंग की डेवट में मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद थी वियो। मेजर हाफिज एहसान इलाही पेंजे दस्तन की क्यादत कदे बहादुरी से विढ़े शहादत जो जाम नोश कयो। मारजी वेल खारजी दहशतगर्दन वटा हथियार ए बारूदी मवाद हथ कियो वियो। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज कानून लागू कदड़ का इदारन ए बेगुनाह शहरियन खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाई में मुलविस हुआ। पाक चीन दोस्ती आसमायल हर वक्त ते पूरो लहंदड़ है। पाक चीन फौज भी इलाकई अमन ए गडल मुफादन के तहफुज लाए हकीकी भाईवार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 99वीं सालगिरह वाली तकरीब का खिताब। फील्ड मार्शल पाक चीन दोस्ती मुनफरद आसमायल है। इलाकई आलमी चैलेंजेस बावजूद मजबूत रही है। तकरीब का खिताब कदे चीनी सफीर दहशतगर्द के खिलाफ वेड़ में पाक फौज की कुर्बानियों की सारा कदे पाकिस्तान से भाईवारी के मजबूत किया। तकरीब दौरान चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह जो केक काटो वो। तकरीब में टिन्ही हथियारबंद फौजन के सीनियर ऑफिसर भी शिरकत कई।
2: और आप ये बात करेंगे कि वो पहली दफा दादली से वजीर आजम बने थे तो फिर आप याद करें यहाँ पे ये भी बात होती है कि कोई पहली दफा मुल्क तोड़ के भी वजीर आजम बना था। अगर वजीर आजम ने जो वोट लिए उन वोटों को आप अगर फॉर्म 47 का कहते हैं तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के। जरदारी साहब के जो बरखुरदारान हैं एक बरखुरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं एक दूसरे बरखुरदार हैं वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है। ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। ओ भाई इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है ये चल नहीं सकता।
1: वज़ीर आज़म के सलाहकार राणा सनाउल्लाह जो पीपल्स पार्टी तेवार शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो मथा मुल्क टोड़े वज़ीर आज़म थियण जो इल्ज़ाम भी लगाए छो। घर वज़ीर मोहसिन नक़वी ते भी तनक़ीद। मुज़फ़्फ़राबाद में चूंड जलसे के खिताब कदे राणा सनाउल्लाह चयो तो जेकॾहिं तव्हां नवाज़ शरीफ खे चवंदा त सदाई धांधली करे वज़ीर आज़म थियो आहे त पोइ हिते ई ॻाल्हि बि थींदी आहे त को मुल्क टोड़े पहिरियों भेरो वज़ीर आज़म थियो हो। वज़ीर आज़म जे वोटनि खे फॉर्म 47 जो सॾींदा त ॿुधायो सदर खे मिलियल वोट कहिड़े फॉर्म जा आहिनि। सरदारी साहब जो ॿियो फर्ज़न चई रहियो आहे त सिस्टम ख़तम थी चुको आहे अॻिते न वधी रहियो आहे। इक़्तदार जा मज़ा वठण बाद ओचितो खेनि सिस्टम ख़राब लॻण लॻो आहे जेका अजीब ॻाल्हि आहे। नवाज़ शरीफ शहबाज़ शरीफ ऐं मरियम नवाज़ खे धांधली करे खटरायो वियो। ख़ैरात में मिलियल सीटनि वारा बि पीपल्स पार्टी ते तनक़ीद करे रहिया आहिनि। सिंध जे सूबाई वज़ीर सईद ग़नी चयो आहे त बंगलादेश थाने में शहीद भुट्टो मुलविस हुजे हा त ज़िया केस कूड़े केस में फाही ॾियण बदिरां बंगलादेश थाने वारे केस में फाही ॾे हा। सूबा ठाहिण जो अख़्तियार कंहिं फर्द या पार्टी वटि न पर असेंबलियुनि वटि आहे। सिंध जो अवाम ऐं चूंडियल नुमाइंदा नओं सूबो नथा चाहिनि। मोहसिन नक़वी भली जेको चवे संदसि ॻाल्हि मञण जा पाबंद न आहियूं। पीपल्स पार्टी घट में घट करप्शन इख़लाक़ियात ते त लेक्चर न ॾिए। मरियम नवाज़ सूबे में तालीम जो बजट वधायो आहे। छा पीपल्स पार्टी सिंध में तालीम जे बजट वधाई आहे। पंजाब जे सूबाई वज़ीरनि जी पीपल्स पार्टी ते तनक़ीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पंजाब जे वज़ीरनि चयो त कराची जा शहरी पाणीअ लाइ परेशान आहिनि। शहर जा ग्रीन बेल्ट ख़तम थी चुका आहिनि। सिहत जो सिंध में ख़राब हाल आहे। सिंध जूं हालतूं सभिनी जे साम्हूं आहिनि। मरियम नवाज़ ते तनक़ीद करण बदिरां मरियम नवाज़ जेतिरो कम त करे ॾेखारियो।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाए 2347-3241-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी याद रखे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842
3: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03125252786
1: जी हा 2315525786
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
6: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी। मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल,
4: ऐं ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03125257866।
4: जी हा, 2315525786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

खास फरमाश नूर चांडियो रफीक चांडियो मीर हसन बुर्दी जावेद बुर्दी वली मामंद रिंद कुनड़ी का नवाब शाह खां मजीद लेगारी जेके मुझे भाई एहसान अली जा दोस्त आन मलिक शाह मुराद मिजरी जरा गौर हुए हाजी दिल मुराद मिजरी वो लख लुटाया से को न थो पो भी कदर नजाकत।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

आईएसपीआर मूजिब उत्तर वजीरिस्तान में कार्रवाई कंदे पंज भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्दन के जहनम भेड़ो कयो वयो। शदीद फायरिंग जी डेवट में मेजर हाफिज अहसान इलाही शहीद थी वयो। बलोचिस्तान के जिले नौशकी में भी ऑपरेशन दौरान आपघाती बम्बार समेत सत भारतीय हिमायती याफ्ता दहशतगर्दन के मारे वयो। मारजी वे खारजी दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस कानून लागू कंदड़ इदारन शहरन खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाई में मुलविस हुआ, जिन के कब्जे में हथियार ए बारूदी मवाद हथ कयो वियो आहे।

0: पाक चीन दोस्ती आज़मायल ऐं हर वक़्त ते पूरी लहंदड़ आहे। पाक चीन फ़ौज बि इलाक़ाई अमून ऐं गॾियल मफ़ादनि जी तहफ़ुज़ लाइ हक़ीक़ी भाईवार आहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जी 99वीं सालगिरह वारे तक़रीब खे ख़िताब। फील्ड मार्शल चयो त पाक चीन दोस्ती मुनफ़रद ऐं आज़मायल आहे, इलाक़ाई ऐं आलमी चैलेंजेस बावजूद मज़बूत रही आहे। तकरीब के खिताब कंदे चीनी सफीर दहशतगर्दी खिलाफ वेड़ में पाक फौज के कुर्बानन की साराह कंदे चयो त पाकिस्तान से भाईवारी के वधीक मजबूत कयो वेंदो। तकरीब दौरान चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह जो केक भी काटो वो। तकरीब में टिन्ही हथियारबंद फौजन के सीनियर ऑफिसर भी शिरकत कई।
1: आप ये बात करेंगे कि वो पहली दफा दादली से वजीर आजम बने थे, तो फिर आप याद करें यहाँ पे ये भी बात होती है कि कोई पहली दफा मुल्क तोड़ के भी वजीर आजम बना था। अगर वजीर आजम ने जो वोट लिए उन वोटों को आप अगर फॉर्म 47 का कहते हैं, तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के थे? जरदारी साहब के जो बरखुरदार हैं, एक बरखुरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं, एक दूसरे बरखुरदार हैं वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है, ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। ओ भाई, इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है, ये चल नहीं सकता।
0: वज़ीर आज़म जी सलाहकार राणा सनाउला जो पीपुल्स पार्टी ते वार। शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो मथा मुल्क टोड़े वज़ीर आज़म थियण जो भी इल्ज़ाम लगाए छो। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ते भी तनक़ीद। मुज़फ़्फ़राबाद में चूंड जलसे के खिताब कंदे राणा सनाउला चयो त जेकॾहिं तव्हां नवाज़ शरीफ़ खे चवंदा त सदाई धांधली करे वज़ीर आज़म थियो आहे, त पोइ हिते हीअ ॻाल्हि बि थींदी आहे त को मुल्क टोड़े पहिरियों भेरो वज़ीर आज़म थियो हो। वज़ीर आज़म जे वॉन्टन खे अवां फॉर्म 47 जो सॾींदा त ॿुधायो सदर खे मिलियल वॉन्ट कहिड़े फॉर्म जा आहिनि। ज़रदारी साहब जो ॿियो फर्ज़ंद चई रहियो आहे त सिस्टम ख़तम थी चुको आहे, अॻिते न वधी रहियो आहे। इक़्तदार जा मज़ा वठण बाद ओचितो खेनि सिस्टम ख़राब लॻो आहे, जेका अजीब ॻाल्हि आहे। पीपुल्स पार्टी सिंध वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी खां उहिदो छॾण जो मुतालबो करे छॾियो। निसार अहमद खोड़ो चयो आहे त लाॻापियल सूबाई असेंबली में ठहराउ मंज़ूर थियण ताईं नओं सूबो नथो ठही सघे। नओं सूबो ठाहिणो आहे त पंजाब में ठाहियो वञे, जिते माज़ीअ में ठहराउ मंज़ूर कयो वियो। ग़ैर आइनी ॻाल्हियूं कंदड़ माण्हू क़ौम जा ॾोहारी तसवर थींदा। फ़ौज सियासत खां लातालुकी जो बयान ॾिनो। घरू वज़ीर फ़ौज खे बदनाम पियो करे। निज़ाम कमज़ोर थियण जूं ॻाल्हियूं कंदड़ घरू वज़ीर खे हुकूमत में न रहण घुर्जे। हाइब्रिड सिस्टम जी तारीफ़ कंदड़ पार्लियामेंट ऐं ऐवान में छो वेठो आहे? सूबाई वज़ीर सईद गनी चयो त नवाज़ शरीफ़, शहबाज़ शरीफ़ ऐं मरियम नवाज़ खे धांधली करे खटरायो वियो। ख़ैरात में मिलियल सीटनि वारा बि पीपुल्स पार्टीअ ते तनक़ीद करे रहिया आहिनि। बंगलादेश साने में शहीद भुट्टो मुलविस हुजे हा त ज़िया केस कूड़े केस में फाही ॾियण बदिरां बंगलादेश साने वारे केस में फाही ॾेई छॾे हा। सूबा ठाहिण जो अख़्तियार कंहिं फर्द या पार्टी वटि न पर असेंबलियुनि वटि आहे। सिंध जो अवाम ऐं चूंडियल नुमाइंदा कंहिं बि सूरत में नओं सूबो नथा चाहिनि।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियुन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 247-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली। खुशखबरी,
8: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
9: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
10: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
9: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
10: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
9: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125252786।
7: जी हा, 231-25-25-786।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: प्रिंट का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
6: खुशख़बरी खुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ककर वसी पिया हेठाइनि वारा इलाइक़ा पाणी हेठि मिठी मटियारी मीरपुर ख़ासि टंडो अलियार ऐं टंडो मोहम्मद ख़ान में तूफ़ानी बरसाति हैदराबाद नंगर पार्कर हाला भेटशाह खैबर उडेरो लाल ऐं कोटड़ी में बि वसकारो ठठो सिजावल मीरपुर भटोरो दड़ो बदीन मातली ऐं नवाबशाह में बि मींहुं पियो टंडो आदम मक़सूद रिंद सां गॾु राजू खानाणी सन खडड़ो खोरवाह मीरवाह गोरचाणी नौकोट ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बि वक़फ़े वक़फ़े सां बरसाति कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बि वसकारे खां पोइ मौसम ख़ुशगवार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी मुस्लिम लीग नून जे सदर नवाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात मुल्क जी मजमूई सूरतहाल ते तफ़सीली ख़्यालनि जी ॾे वठि वज़ीर आज़म आफ़ीस जी पधराई मूजिबि रायवन लाहौर में थियल मुलाक़ात दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ऐं नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बि मौजूदु हुआ पाक चीन दोस्ती आज़मायल ऐं हर वक़्त ते पूरी लहंदड़ आहे पाक चीन फ़ौज बि इलाक़ाई अमुन ऐं गडि॒यल मफ़ादनि जे तहफ़ुज़ लाइ हक़ीक़ी भाईवार आहे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जे 99वीं सालगिरह वारी तक़रीब खे ख़िताब फील्ड मार्शल चयो त पाक चीन दोस्ती मुनफ़रद ऐं आज़मायल आहे इलाक़ाई ऐं आलमी चैलेंजिस बावजूद मज़बूत रही आहे तक़रीब खे ख़िताब कंदे चीनी सफ़ीर दहशतगर्दी ख़िलाफ़ वेड़ में पाक फ़ौज जी क़ुर्बानीनि जी साराह कंदे चयो त पाकिस्तान सां भाईवारी खे वधीक मज़बूत कयो वेंदो तक़रीब दौरान चीन जे पीपल्स लिबरेशन आर्मी जी 99वीं सालगिरह जो केक बि काटियो वियो तक़रीब में टिनी हथियारबंद फ़ौजनि जे सीनियर ऑफिसरनि बि शिरकत कई

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842
3: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाव पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
0: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 03125252786
1: जी हा 2315-2575-786
0: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाक चीन दोस्ती आज़मायल ऐं हर वक़्त ते पूरी लहंदड़ आहे। पाक चीन फ़ौज बि इलाक़ाई अमुन ऐं गॾियल मफ़ादनि जे तहफ़ुज़ लाइ हक़ीक़ी भाईवार आहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जे 99वीं सालगिरह वारे तकरीब के ख़िताब। फील्ड मार्शल चयो त पाक चीन दोस्ती मुनफ़रद ऐं आज़मायल आहे, इलाक़ाई ऐं आलमी चैलेंजेस बावजूद मज़बूत रही आहे। तकरीब के ख़िताब कंदे चीनी सफ़ीर दहशतगर्दी खिलाफ़ वेड़ में पाक फ़ौज जे क़ुर्बाननि जी साराह कंदे चयो त पाकिस्तान सां भाईवारीअ खे वधीक मज़बूत कयो वेंदो। तकरीब दौरान चीन जी पीपुल्स लिबरेशन आर्मीअ जी 99वीं सालगिरह जो केक बि काटियो वियो। तकरीब में टिन्ही हथियारबंद फ़ौजनि जे सीनियर ऑफिसरनि बि शिरकत कई।
2: और आप ये बात करेंगे कि वो पहली दफा धांधली से वजीर आजम बने थे, तो फिर आप याद करें यहाँ पे ये भी बात होती है कि कोई पहली दफा मुल्क तोड़ के भी वजीर आजम बना था। अगर वजीर आजम ने जो वोट लिए उन वोटों को आप अगर फॉर्म 47 तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो जरदारी साहब के जो बरखुरदारान हैं, एक बरखुरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं, एक दूसरे बरखुरदार हैं वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है, ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। ओ भाई, इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है, ये चल नहीं सकता।
3: वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउल्ला जो पीपल्स पार्टी ते वार। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मथां मुल्क टोड़े वज़ीर आज़म थियण जो इल्ज़ाम बि लॻाए छॾियो। घर वज़ीर मोहसिन नक़वी ते बि तनक़ीद। मुज़फ़राबाद में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे राणा सनाउल्ला चयो त जेकॾहिं तव्हां नवाज़ शरीफ़ खे चवंदा त सदाई धांधली करे वज़ीर आज़म थियो आहे, त पोइ हिते ई ॻाल्हि बि थींदी आहे त को मुल्क टोड़े पहिरियों भेरो वज़ीर आज़म थियो हो। वज़ीर आज़म जे वोटनि खे अव्हां फॉर्म 47 जो सॾींदा त ॿुधायो सदर खे मिलियल वोट कहिड़े फॉर्म जा आहिनि। सरदारी साहब जो ॿियो फर्ज़ंद चई रहियो आहे त सिस्टम ख़तम थी चुको आहे, अॻिते न वधी रहियो आहे। इक़्तदार जा मज़ा वठण बाद ओचितो खेनि सिस्टम ख़राब लॻो आहे, जेका अजीब ॻाल्हि आहे।
1: पीपल्स पार्टी सिंध वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी खां उहिदो छॾण जो मुतालबो करे छॾियो। निसार खोड़ो चयो आहे त लाॻापियल सूबाई असेंबलीअ में ठहराउ मंज़ूर थियण ताईं नओं सूबो नथो ठही सघे। नओं सूबो ठाहिणो आहे त पहिरीं पंजाब में ठाहियो, जिते माज़ीअ में ठहराउ मंज़ूर कयो वियो। गैर आइनी ॻाल्हियूं कंदड़ माण्हू क़ौम जा ॾोहारी तसवर थींदा। फ़ौज सियासत खां लातालुकी जो बयान ॾिनो। घरू वज़ीर फ़ौज खे बदनाम पियो करे। निज़ाम कमज़ोर थियण जूं ॻाल्हियूं कंदड़ घरू वज़ीर खे हुकूमत में न रहण घुर्जे। हाइब्रिड सिस्टम जी तारीफ़ कंदड़ पार्लियामेंट ऐं ऐवान में छो वेठो आहे। सूबाई वज़ीर सईद गनी जो चवणु हो त नवाज़ शरीफ़, शाहबाज़ शरीफ़ ऐं मरियम नवाज़ खे दांधली करे खटरायो वियो। ख़ैरात में मिलियल सीटनि वारा बि पीपुल्स पार्टीअ ते तनक़ीद करे रहिया आहिनि। बंगलादेश साने में शहीद भुट्टो मुलविस हुजे हा त ज़िया खेस कूड़े केस में फाही ॾियण बदिरां बंगलादेश साने वारे केस में फाही ॾे हा। सूबा ठाहिण जो अख़्तियार कंहिं फर्द या पार्टी वटि न पर असेंबलियुनि वटि आहे। सिंध जो अवाम ऐं चूंडियल नुमाइंदा कंहिं बि सूरत में नओं सूबो नथा चाहिनि।
3: पीपल्स पार्टी घट में घटि करप्शन ऐं इख़लाक़ियात ते तलिक़चर न ॾे। मरियम नवाज़ सूबे में तालीम जो बजट वधायो आहे। छा पीपल्स पार्टी सिंध में तालीम जे बजट वधाई आहे? पंजाब जे सूबाई वज़ीरनि जी पीपल्स पार्टी ते तनक़ीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पंजाब जे वज़ीरनि चयो त कराची जा शहरी पाणीअ लाइ परेशान आहिनि। शहर जा ग्रीन बेल्ट ख़त्म थी चुका आहिनि। सिहत जो सिंध में ख़राब हाल आहे। सिंध जूं हालतूं सभिनी जे साम्हूं आहिनि। मरियम नवाज़ ते तनक़ीद करणु बदिरां मरियम नवाज़ जेतिरो कम त करे ॾेखारियो।
1: नवां सूबा असांजी ख़्वाहिश न पर पाकिस्तान जी मजबूरी आहिनि। पाकिस्तान में मसलनि जो तूफ़ान आहे। हिकु वफ़ाक ऐं 4 सूबनि वारे सिस्टम सभु वसीला घटिजी विया आहिनि। एमक्यूएम अॻवान ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो त महरूमियुनि सबबि माण्हू रियासत ख़िलाफ़ थी रहिया आहिनि। बद इंतिज़ामी सबबि मुल्क में मसला वधी रहिया आहिनि।
4: वो मोहसिन नकवी साहब आप साहब भी थे, सहाफत से आप आ गए निगरान वजीर आला, निगरान वजीर आला से आप आ गए क्रिकेट बोर्ड के सरबरा, फिर इंटीरियर मिनिस्टर बन गए। आपकी स्पेशलिटी है या आप हॉकी के खिलाड़ी हैं और आप क्रिकेट वालों को मशवरा दे रहे हैं? आपको तो कंचे खेलने का पता नहीं है और आप वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का मशवरा दे रहे हैं। आपको पता नहीं किसने फीड किया है, कोई बैरूनी मुल्क ताकतें तो आपके पीछे नहीं है जो आपको मिसगाइड कर रही हैं? पाकिस्तान को जरूरत है जोड़ने की। आप एक जगह आग जलाकर भाग्य पर दूसरा नुक्कड़ पे आग लगाने पहुंच रहे हैं। सिंध में भी आग लगाना क्यों चाहते हैं मुझे बताएं, किसकी ख्वाहिश होनी चाहिए? इस वक्त आप किसकी हिदायत पर ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अमन अमान को तबाह किया जाए, और क्यों कर रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब गुज़िश्ता 6-7 हफ्तों में किससे मिले, किससे मुलाकात हुई है, फॉरेंसिक करवाए उनकी गुफ्तगू की, उनको ये हिदायत कहां से आई है कि पाकिस्तान में मजीद आग लगाई जाए? वो क्यों पाकिस्तान के लोगों को तबाह बर्बाद करने के पीछे लगे हुए?
3: मोहसिन नकवी अवां वट अहलियत कड़ी है कहजी एजेंडा ते सिंध में बाह लगाण चाहियो था अवां के केर पे इस्तेमाल करे? कौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज लतीफ वली जो जे नवन सूबन जी गाल कंदड़ वफाकी घर वजीर ते छिती तनकीद। अयाज लतीफ चयो ता हन वक्त मुल्क के
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
7: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
7: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331252576।
7: जी हाँ 2315525786
6: GAFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।